प्रसाद बलिहारी गुर अपने द्योहाड़ी सदवार जिन मानस ते देवते किए

एक उत्तम पंथ सुनियो हो गुर संगत तह मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुरु राम दास राखो शरणाई एक अरदास पाठ कीरत की

तीसरे पदे की संपूर्णता की जी गुरु साहब ने, हौ हौ करत ना त्रिशन बुझ है। अरे मेरी मेरी करते हैं कदे त्रिश्ना नहीं बुझदी। नह काम पूर्ण ज्ञाने, कहिंदे ना ही त्रिश्ना मुकदी है, ना कामनावां पूरियां हुंदियां ने, ते ना ही ज्ञान मिलदा, कुछ नहीं, सारे पासे अधूरा ही रह गया। त्रिश्ना बहुत सी ना, वो त्रिश्ना ने कुछ होर सोचन ही नहीं दिता। मन विच किसे एक वस्तु नू लेके लालसा पैदा हो जाए, फिर उही वस्तु घूमी जाती है अखां सामने भी, ख्यालां विच भी उही वस्तु, होर किसे वस्तु पदार्थ वाले इंसान वेखदा ही नहीं। इन्हों होर सौखा कर लिए, कोई मोटर वहीकल मन नू भा जाए, बहुत चंगा लग गया। हुण मन अंदर एक ख्याल बुनिया गया भी आपां यही मोटर वहीकल लैके आउणा है, ख्याल उपज पिया, इच्छा भी बन गई ते त्रिश्ना भी बन गई, दोवें चीज़ां हो गई ना। मोटर वहीकल वेख्या बड़ा पसंद आया, इच्छा बन गई आपां लैके आउणा है, त्रिश्ना भी नाल ही है, इच्छा नाल ही त्रिश्ना बन गई, लालसा ना। हुण ये नहीं वेख रहा भी मेरे कोल है, मेरा गुजारा हो रहा है, पर त्रिश्ना जिहड़ी ओह की है, आपां इह लैके आउणा है। हुण उहदा ख्याल इन्ने क बणे, रोड दे उत्ते सड़क ते कई मोटर वहीकल तुरे जांदे, कोई नहीं दिसदा, किहड़ा दिसदा है, जिहड़ा अपने ख्यालां च, उही दिसदा है। तुरियां कई गड्डियां जांदियां ने, पर नज़र उसे गड्डी ते टिकदी है जिहड़ी अपने आप नूं चंगी लगी, भी मैं ते आही लैके आऊं। तुरियां बड़ियां जांदियां, फिर इंज लगता है भी लग सारा संसार ही यह गड्डियां लई फिरदा जिहड़ी मैनू चंगी लगती है। कदे भी अजमा के वेख लो, जिहड़ी वस्तु सानू चंगी लगे, साडे मन नू चंगी लगे ना, इंज प्रतीत होण लग जांदा भी सारा संसार ही यह वस्तुआं लई फिरदा, सारियां कोले ही है, क्योंकि मेरे मन नू भारे, फिर दूजियां किसे वल नहीं ध्यान गया। त्रिश्ना मल कहिंदे, हौ हौ करत ना त्रिशन बूझै, लालसा नहीं मुकी। क्यों? मैं इसे करके साहिब ने कहा ना, मेरी मेरी कैरों करते दुर्योधन सहभाई, बारह योजन छत्र चले ता देही गिरजन खाई। मैं मेरी करके की करेंगा, मैं मेरी चो भी किसी ने कुछ खटिया। इथे ते जब आपा परका मिट गया, जत देखो तत तू तक दा सफर है, इत्थे मैं मेरी दा ते सफर ही है नहीं। दो रस्ते ने, जां मैं मेरी दे राह ते तुर पाऊ, जां तू तेरे राह ते तुर पाऊ, ते जेड़ा मैं मेरी दे राह ते तुर पिया उहनूं मंजिल थोड़ी मिली है, वह ते उजड़े पिया, उजड़े पए नूं कदे मंजिल नहीं मिलदी, फिर वह भावें सफर जिन्ना मर्जी तय कर ले, जेड़ा राह ही भुल गया उहनूं कदे मंजिल मिली है जी। भावें वह शाम पे इंजनू 200 किलोमीटर तुरया जाए भी मैं तो बड़ा सफर तय कर लिया, पर मैनू मंजिल नहीं मिली। हुण उह तां जिन्ना 200 किलोमीटर उन्हें तय किया ना, वह सारा व्यर्थ है, किसी काम नहीं आना। हुण उहनू 400 किलोमीटर होर तय करना पैना, 200 मुड़ना पैना, तो 200 अगां जाना पैना अपनी मंजिल वल, दुगना राह हो गया। जबकि जे सीधा रस्ता होंदा तो फिर 200 किलोमीटर से वह अपनी मंजिल तक पहुँच सकता, पर हुण 600 तय करना पिया, 200 गलत, फिर जिहड़ा गलत तय किया वह पिछे मुड़ना पिया, 200 ए, फिर 200 सीधे राह ते तुरना पिया, फिर किते जाके अपनी मंजिल ते पहुंचिया। सतगुरु कहिंदे मैं मेरी दे राह उत्ते जिन्ना पैंडा तय करेंगा सारा मुड़ना ही पैना, जिन्ना मर्जी तय कर ला, 10 साल तुरिया चल मुड़ना पएगा, 20 साल तुरिया चल मुड़ना पएगा, 50 साल तुरया चल मुड़ना पएगा, नहीं मुड़ेगा व्यर्थ है, मंजिल नहीं मिलेगी।
ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਲ ਵਿਅਰਥ, ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਮੇਰੀ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਿਆ ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਜਦ ਆਪਾਂ ਪਰਕਾ ਮਿਟ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਨਾ, ਜਦ ਦੇਖੋ ਤਤ ਤੂੰ ਸਫਲ ਹੋ ਹੀ ਜੇ। ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਅਕਾਰਥ ਕੀਨ, ਜਿੰਨਾ ਲੰਘਾ ਲਿਆ ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰਾ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਜੇ ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ, ਸਫਲਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ 50 ਸਾਲ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, 50 ਸਾਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਰ 10 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10 ਸਾਲ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ 10 ਸਾਲ ਮੈਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਲਾਂ, 10 ਸਾਲ ਸਫਲੇ ਨੇ, 50 ਤੇ ਵਿਅਰਥ ਨੇ, ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਏਕ ਘਰੀ ਆਦੀ ਘਰੀ ਆਦੀ ਹੂੰ ਤੇ ਆਦ ਭਗਤਨ ਸੇਤੀ ਗੋਸਟੇ ਜੋ ਕੀਨੋ ਸੋ ਲਾਭ। ਲਾਭ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਬਸ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਉ ਹਉ ਕਰਤ ਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬੂਝੈ ਨਹ ਕਾਮ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨੇ। ਨਾ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਨਾ ਗਿਆਨ ਪੂਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁੱਕੀ। ਸਹਿਸ ਖੱਟੇ ਲੱਖ ਕਉ ਉੱਠ ਧਾਵੈ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨ ਆਵੈ ਮਾਇਆ ਪਾਛੈ ਪਾਵੈ। ਦੱਸੋ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਜਿਹਨੇ

पवन गुरु पाणी पितामह धरत महत देव सरात दुदाई दया खेल असल जगत चाइया बुराइया बच्चे तनम दो करमी आपो अपनी कि नेड़े के दूर जिन्हें नाम ते आया गए।

तार जियर एक टेक दो लाहे बडानी आस नानक नाम ते आइए कार जियावे रास होवे सिपत कसम दी

0: मत इन्हां दी इस तरह की हो गई है। फिर थोड़ा समझ लियो, जे असी लंगर प्रसाद छकदे छको, लंगर तैयार कादे वास्ते हुंदा है? सिख संगत वास्ते हुंदा है, लोड़वंद जरूरतमंद वास्ते हुंदा है। पर कल्ला लंगर नहीं छकना, नाल सिमरन भी करना है, नाल असी सेवा भी करनी है। जे सेवा सिमरन नहीं है, कल्ला असी लंगर छक रहे हैं, फिर महाराज कहिंदे ने ओ फिर गुरु घर दा धान खा के अकल मोटी हो जाती है। इस वास्ते सिमरन भी नाल बड़ा जरूरी है। जे तुसी लंगर प्रसाद छकदे हो, फिर थोड़ा चिर बैठ के सिमरन भी करो, सेवा करो, सेवा करो, सिमरन करो। साहब जी कहिंदे गुर धान इन खायो अधिक डहकायो, इसलिए ये बहुता कबूल बोलदा, कौड़ा बोलदा, रस नहीं ना भरिया अंदर। कल्ला लांगरी बन के सेवा करते रहे, पर अंदर भांडा सेवा भावना वाला नहीं है, जिस करके इदी ए हालत हुई है।
1: पिछले जन्म मसंद थो भूखा बड आही।
0: महाराज हस के कहिंदे लगदा पिछले जन्म च मसंद ही होएगा, क्योंकि मसंदा का जो हाल होया, जिन्हें वह बिगड़ चुके सी, गुरु घर दे विच रह के भी उन्हां दी हालत हो गई, तो फिर महाराज ने एक एक नू सौदा भी लाया। साहब कहिंदे मैनू लगदा कोई ये पिछले जन्म का मसंद ही होएगा, हजे भुख नहीं मिटी अंदर दी। भुख का इत्थे अर्थ है तृष्णा, ये पेट की भुख नहीं, इत्थे भुख का अर्थ है तृष्णा नहीं अंदरों मिटी हजे। वो जड़ा लोभ लालच अंदर है ना, वो हजे मिटिया नहीं है, वो हजे वो अंदर वो गुण चलिया आ रहा है। नाले मुस्कराए ते नाले मारे कहिंदे पिछले जन्म मसंद थो भूखा बड आही, भी ये अंदर हजे

तारे जिन भगत भव जल तारे सिमरै सोई नाम सिमरै सोई नाम प्रधान तित नाम रसक नानक लहना थप्यो जेन सर्व सिद्धि अवजन कल सबुद्धि तीरथ जन अमर दास विस्तरिया कीरत रव किरण प्रगट संसार है साख तरोवर मवल सरा उत्तर दखने पुब अर पच्छम।

सोई नाम अछल भगत पाव तारन, अमरदास गुर को फुरिया। नाम कित संसार किरण।

तीस अर साधक सिद्ध नर नाम खंड ब्रह्मंड तारे जेहे नाम समादेओ हर सोग सम कर सहारे नाम श्रोमण सर्ब में भगत रहे लिवतार सोई नाम पदार्थ अमर गुर तुस दियो करतार।

0: तै पढ़ियो एक, मन धरियो एक, कर एक पछाण्यो, नैन बैन मुहे एक एक, दोहो ठाए ना जानियो, सुपन एक पर तख एक, इक्कस महलीनो, तीस एक आर पांच सिद्ध, पैंतीस ना खीनो, एक हुजे लाख लखो अलख है, एक एक कर वरनियो, गुर अमरदास जालप पणे, तू एक लोड़ है एक मन्यो।
1: जे मत गही जय देव, जे मत नामै समाणी, जे मत तर

जो गुण अलख अगम तिन्हे गुण अंत न जानो बहुतो विधाते निर्मयो सब संगत कुल उदरंग गुर अमरदास